0: टीवीएस साथ छ हाम्रो।
1: शुक्ला गण्डकी रेफरेन्स ल्याबोरेटरी ल्याब एसआरएल मा रक्त परीक्षणमा 30% छूट।
2: दशैं तिहार लगायतका महत्वपूर्ण पर्वहरूको अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक

0: शुक्ला गण्डकी 4 भित्री बजार,
1: ज्योतिष ऋषिराम पौडेल, रिद्धि सिद्धि पूजा सामग्री भण्डार, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा हेल्प पोस्ट लाइन, मोबाइल 9800 58 466,
2: प्रोप्राइटर अर्जुन गुरुङ, दाउराको सेकुवा, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा तनहु, मोबाइल नम्बर 9715065555,
1: प्रोप्राइटर छत्रधर आत्रेय एवं महालक्ष्मी एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज प्राली, शुक्ला गण्डकी 2 हलेदी तनहु।

0: शुक्लागंध की एफएम 97.6
1: शुक्लागंध की टाइम चेक
2: यति बेला मध्याह्नको ठिक 12 बज्यो।
3: टिभी एपमा पाउनुहोस् 200 भन्दा बढी एचडी।
4: यो समय किसान

कंक्रीट एण्ड ब्लक उद्योग शुक्ला गण्डकी 2 कोत्रे फोन 98560 29 500 प्रोप्राइटर बिरसना श्रेष्ठ असीम अजमी फैंसी स्टोर शुक्ला गण्डकी 4 भिलेगौंडा फोन 98461 94 300

0: पाँव यूं पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यकायकी नाचो नाचो नाचो
1: नाचो। अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा झुमक झुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो।

0: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी, दीपावली, थर पर्व 2083 र नेपाल सम्मान 1147 पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुस्वास्थ्य, आर्थिक एवं शैक्षिक समुन्नतिको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष रामकृष्ण भट्टराई, प्रधान अध्यापक नारायण पौडेल एवं सरस्वती नमुना मावि शुक्ला गण्डकी साथ खैरेनीटार परिवार,
2: निर्देशक उदय पौडेल एवं लिटल गार्डन इंग्लिस बोर्डिंग स्कूल शुक्ला गण्डकी चार दुलेगौड़ा परिवार,
1: संस्थापक बाबुराम कार्की, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हिम कुमार श्रेष्ठ, प्रिन्सिपल सुरेश पौडेल एवं ज्ञान बगैचा इंग्लिस बोर्डिंग स्कूल परिवार शुक्ला गण्डकी 5 सेराटार,
3: संस्थापक शिव बहादुर कार्की, निर्देशक विक्रम कार्की, प्रिन्सिपल रोशन पौडेल एवं अरणीको सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कूल परिवार शुक्ला गण्डकी 3 कवासे,
2: प्रिन्सिपल एवं बाल विद्या मावि शुक्ला गण्डकी 2 गाछे पानी परिवार।
4: श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ एवं कथा प्रवचन
5: यही असोज 25 गतेदेखि कार्तिक 1 गते सम्म स्थान सिद्धेश्वर शिव पञ्चायत मन्दिर परि

0: टीवीएस साथ छ हाम्रो।
1: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बन्ध 1147 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण शेयर सदस्य, सेवाग्राही, कर्मचारी, शुभचिन्तक तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: अध्यक्ष गायत्री प्रसाद पौडेल एवं शुभकामना बहुदेशीय सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी चार दुलेगौड़ा परिवार।
1: अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ एवं मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी सात मिलदारा परिवार।
3: अध्यक्ष उपेन्द्र तिमिल सिन्हा एवं तिनखोले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी सात खैरेनीटार परिवार।
2: अध्यक्ष बाबुराम कार्की एवं बेलचौतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी पाँच बेलचौतारा परिवार।
1: रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड दुलेगौड़ा खैरेनीटार परिवार।
4: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 मेगाहर्ज।

बस तुम पास एक जगह बस है बस तुम पास चाहे तुम बस तुम मेरे साथ रहो है बस तुम

0: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी दीपावली छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्वत 1147 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण शेयर सदस्य सेवाग्राही कर्मचारी शुभचिन्तक तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष सूर्य देवी सिगदेल एवं खैरेनटार महिला बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 6 खैरेनटार परिवार,
2: अध्यक्ष मिलन पौडेल एवं नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा परिवार,
1: अध्यक्ष मान कुमार तिनला एवं उन्नति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार दुलेगौड़ा, फोन नम्बर 0 65 4 14 255,
2: अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद भट्टराई एवं नवज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 8 फिर्दी परिवार। तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी FM 97.6 मेगाहर्ज।

0: जापानमा नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी दीपावली छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्वत 1147 पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक शुभेच्छुक आफन्तजनहरू साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सँगै उत्तर उत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोपाइटर सुभाष चन्द्र गिरी, न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेशन, शुक्ला गण्डकी 4 दोलेगौडा भित्री बजार, हेल्प पोस्ट चोक नजिकै। फोन 98560-20630। प्रोपाइटर केशर बहादुर तीन सेना फेस हाउस, शुक्ला गण्डकी 4 दोलेगौडा। फोन 98560-00778। प्रोपाइटर कमल चन्द्र लम्साल होटल एन्ड लज, शुक्ला गण्डकी 4 दोलेगौडा। फोन 98411-95442। प्रोपाइटर राजेन्द्र पौडेल, सुलभ मोबाइल एन्ड एसेसरिज, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा। फोन 98463-23111। प्रोपाइटर दिनेश घिमिरे, चण्डी कालिका सुनसादी पसल, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा। फोन 98560-62099।
2: समय आएको छ नेपाली आठ को दम को।

0: शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी दीपावली छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्वत 1147 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक शुभेच्छुक आफन्तजनहरू साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सँगै उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोप्राइटर पम्फा लालजन आशु डिपार्टमेन्ट स्टोर शुक्ला गण्डकी 6 मेन डाँडा फोन 0565704334 प्रोप्राइटर कमल मोहन घिमिरे पश्चिमाञ्चल स्टेशनरी शुक्ला गण्डकी 7 खैरिनी टार फोन 9846061849 प्रोप्राइटर मीन बहादुर सुनार ओम एम आबुसर सुनचारी पसल शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा भीमसेन टोल फोन 9846069246 प्रोप्राइटर रघुनाथ पौडेल रसु बेबिल्यान्ड शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा फोन 9856005577 प्रोप्राइटर प्रेम बहादुर गुरुङ गुरुङ किराना पसल शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा फोन 9856209779।
2: टीवीएस कंपनी का विभिन्न मोडल का मोटरसाइकिल र स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौड़ा में टीवीएस कंपनी का बाइक र स्कूटर को खरीद बिक्री सब ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग गुणस्तरीय भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा का लागि सम्झनुहोस् टीवीएस एंजल राइडर्स प्राली शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा प्राइम बैंक संगे शुक्ला गण्डकी एफएम को पारिपट्टी मोबाइल नंबर 9856309682

0: पलहु सेवा हस्पिटलमा अब थप नयाँ व्यवस्थित व्यवस्थापनको साथमा दैनिक निम्न विशेषज्ञद्वारा सेवा उपलब्ध भइरहेको जानकारी गराइन्छ। फ्यामिली फिजिसियन एन्ड इमर्जेन्सी मेडिसियन डाक्टर रविबहादुर गुरुङ दैनिक बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म। नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर साजन बराल दैनिक बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 देखि 7 बजेसम्म। हार जोड्ने तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल विक दैनिक बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 देखि 7 बजेसम्म। स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुदीप गुरुङ दैनिक बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 देखि 7 बजेसम्म। बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमन कुमार झा दैनिक बिहान 8:30 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म। डाक्टर रूपेश कुमार यादवद्वारा 24 घण्टा स्वास्थ्य परीक्षण, फिजियोथेरापी परामर्श तथा दैनिक उपचार सेवासँग सम्बन्धित सुसन कालु स्नेहा मण्डल दक्ष प्राविधिकद्वारा 24 घण्टा परामर्श सहितको फार्मेसी सेवा साथै निशुल्क होम डेलिभरी। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 0625414377 र 9856043343। तनहु सेवा हस्पिटल शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4 बीपी चोक। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्मत 1147 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण टोलवासी, सामाजिक संघ संस्था, बुद्धिजीवी एवं सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष डीबी नेपाली एवं भीमसेन टोल विकास संस्था भीमसेन टोल शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा,
2: अध्यक्ष अंजु सिंह ठकुरी, उपाध्यक्ष कमल चन्द्र लम्साल, सचिव तुलसी शाह एवं अन्नपूर्ण टोल विकास संस्था शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा परिवार।
3: टीवीएस कम्पनीका विभिन्न मोडेलका मोटरसाइकल र स्कूटर एन्जल राइडर्स प्राली दुलेगौड़ामा। टीवीएस कम्पनीका बाइक र स्कूटरको खरिद बिक्री, सबै ब्रान्डका पार्ट्स र सर्भिसिङ, गुणस्तरीय, भरपर्दो र विश्वासिलो सेवाका लागि सम्झनुहोस् टीवीएस शोरूम एन्ड सर्भिस सेन्टर एन्जल राइडर्स प्राली, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा, प्राइम ब्याङ्क सँगै शुक्ला गण्डकी एफएमको पारिपट्टि। मोबाइल नम्बर 9856309982 र 9705620209।
4: TVS साथ छ हाम्रो।
5: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बत 1147 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण शेयर सदस्य, सेवाग्राही, कर्मचारी, शुभचिन्तक तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
6: अध्यक्ष देवी भक्त राणा एवं तपाई हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा परिवार।
5: अध्यक्ष खिम बहादुर कुमाल एवं रूपान्तर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 6 खैरिनटार परिवार।
7: अध्यक्ष दोग बहादुर तामाङ एवं नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा परिवार।
5: अध्यक्ष तीर्थराज गर्तौला एवं सिद्धार्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 3 कवासी परिवार।
6: अध्यक्ष महेश्वर भट्टराई एवं शुक्ला कृषि पर्यटन सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा।
8: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।